0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: Southall Travel, at all protected.
2: Are we there yet?
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: How? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
7: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

मन सगल पवन की शुद्ध मन मोह चोटा ना खाए मन जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन मार्ग ठाक ना पाए मन पत्स्यों प्रगट जाए मन मग ना चले पंथ मन धर्म से ती संबंध।

जो तुद्भावै साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाए असंख पापी पाप कर जाए असंख कूड़े यार कूड़े फिराए असंख मलेच्छ मल भक खाए असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक वार जो तुद भाव है साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: प्यार और इश्क, जी हाँ इसी के बारे में है हमारा ये आवर ऑफ द शो, द सेकंड आवर व्हिच इज द रोमांटिक आवर ऑफ द संडे रैप. यू ट्यून इन टू लाइका रेडियो ऑन 1450 AM अक्रॉस ग्रेटर लंदन, डीएबी डिजिटल रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स, गूगल अलेक्सा एंड गूगल होम, अलेक्सा लाइकारेडियो.com एंड द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. मैं हूँ मैसा और मैं आपका साथ दूंगी अप अंटिल 10 PM एंड लॉट्स ऑफ प्यार भरे सॉन्ग्स आर कमिंग योर वे, इंक्लूडिंग अ ब्यूटीफुल क्लासिक हिट ऑफ द आवर एज वेल. एंड जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग फादर्स डे अक्रॉस द लाइका रेडियो नेटवर्क टुडे. सो वी डिड हैव अ विनर इन द लास्ट आवर ऑफ द शो, इट वॉज Khalid Khan. And now at the end of this second hour as well, we will have another winner. One of you will win a tin box of mixed mithai courtesy our friends at Ambala Sweets. So who will that be? For that you will have to wait for the competition jingle to send in your entries. Don't worry, it could be one of you. So kahin mat jaiyega, keep tuned into Lyka Radio.
1: Join the dots with Mesa.
2: Lyka Radio.
0: Join the Dots game has begun in the last hour of the show, and

0: है ये घर पर. सो लेट्स लिसन टू द थ्री सॉन्ग्स. फर्स्ट सॉन्ग इज अखियां मिलाऊं कभी हाय शर्माऊं क्या तूने किया जादू फ्रॉम राजा. दूसरा गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके फ्रॉम राजा हिंदुस्तानी. और तीसरा गाना है साजन जी घर आए फ्रॉम कुछ कुछ होता है. अभी किसी एक गाने में ना मैंने एक गड़बड़ की है लिरिक्स की, आपको वो पहचानना है. आई एम गोना रिपीट इट अगेन फॉर यू. पहला गाना है अखियां मिलाऊं कभी हाय शर्माऊं क्या तूने किया जादू. दूसरा गाना है आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके. और तीसरा गाना साजन जी घर आए फ्रॉम कुछ कुछ होता है. बताइए किस गाने में हुई है गड़बड़ ऑन दिस नंबर.
1: WhatsApp Leica Radio Greater London now on 07424-222222.
2: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: You know how fans shout at football matches?
2: Oh, wake up!
1: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
3: London, you asked and it's happening. Aditya Gadhvi Garba Tour UK 2026.
4: Latuke halo ne nandala.
3: At Watford Colosseum on Saturday, 8th August is now sold out. But due to huge public demand, one more show has been added at the same venue. Watford Colosseum on Friday, 7th August 2026. Leica Radio Network is proud to be the exclusive radio partner. Aditya Gadhvi live in London. Book now on AXS. Aditya Gadhvi live in London at Watford Colosseum. Book now.
5: जब नया होता है ना एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो नया होता है।
6: From friends to lovers to total chaos, the perfect cocktail is back.
7: दोस्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना तुझे उतने अच्छे दोस्त भी नहीं है।
6: Shahid Kapoor, Kriti Senon and Rashmika Mandanna come together in this summer's hottest romantic comedy. Cocktail 2, now in cinemas.
8: दुल्हन के लिए मेकअप।
6: For cinema listings and local info, visit Bakrania Media on Instagram.
9: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दे डू द प्लानिंग कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
10: साउथहॉल ट्रेवल At all protected.
11: Location, location, location.
12: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
11: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
12: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
11: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
12: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
11: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
12: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
11: High appreciation.
12: In Dubai.
13: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com
0: The sounds of love in London